0: अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं हमारे सिवा, हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने।
1: Here, feel the sound of NTN Radio 89.1 FM.

0: परसों बाद यूं खेलने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

जुगल, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: हाय हाय हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा, वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा, बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाख दुहाई, वो एक न माना, पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा, गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला, कचरे में डाला। फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा, मैं वापस भाग।

0: आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा,
1: आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा।
0: बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए, दिए तेरा मुन्ना भाई हो, दिए तेरा

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।
0: तथास्तु।

0: 89.1 FM, NTN Radio, the pulse of Guyana.
1: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। उनके स्वर्गवास की खबर से दुनिया के कोने कोने में संगीत के लाखों प्रेमियों की आंखों से आंसू बहे हैं। मेरी आंखों ने उन्हें अमेरिका में दम तोड़ते देखा। आंसू भरी आंखों से मैंने मुकेश भैया के पार्थिव शरीर को अमेरिका से भारत के लिए विदा होते देखा। मुकेश भैया को श्रद्धांजलि अर्पण करूं तो किन शब्दों में, जिनमें एक बहन की भावनाएं सिसकती हैं या जिनमें एक कलाकार दूसरे कलाकार की महान कला की प्रशंसा करता है, या फिर उन शब्दों में जिनमें एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण की जाती है। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। 30 बरस से उनकी मधुर आवाज ने कितने लोगों का मनोरंजन किया, इसकी गिनती करते करते न जाने कितने ही वर्ष बीत जाएंगे। मुकेश भैया जीवन में तरह तरह के दुखों का सामना करते करते एक संयमी पुरुष बन गए थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का नाम हर समय उनके होठों पे रहता था।

0: कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती।
1: भाई और बहनों, कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 2,00,000, कोई कहता है 50,000, कितने गाने कितनी जबानों में और किस किस किस्म के गाने गाए हैं। माँ का गाना है तो बच्चों को रुला दिया है, बच्चों का गाना है तो माँ को रुला दिया है, भाई का गाना है तो बहन को रुला दिया है, बहन का गाना है तो माँ को रुला दिया है। वो लता मंगेशकर आज मेरी बहन मेरे कहने के ऊपर मेरे सिर पर बोझ रखकर एहसान का और आज आ गई हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब वो आप लोगों के सामने आए। लता मंगेशकर

0: कौन सा दुख उस हसमुख कलाकार के अंदर छुपा था जो उस दिन अचानक उनके मुंह से ये शब्द निकल गए।
1: दिल जलता है तो जलने दे, मगर आंसू भरी है ये जीवन की राहें।

मुकेश भैया, आपने मुझसे वादा किया था कि 2 महीने बाद प्रोग्राम के लिए हम फिर अमेरिका आएंगे। किया था ना आपने ये वादा?

0: कठिन आवाजें लग रही थी। सन्यासी, संगम।
1: ना ये संगम है ना ये सन्यासी है भाई और बहनों।
2: अभी हम आपको एक बहुत पुराना गाना सुना रहे हैं, बड़े अरमान उसे रखा है बलम तेल का।

राकेश भैया के बारे में कभी नहीं सुना कि उनसे किसी को दुख पहुंचा हो। उन्हें जब किसी ने दुख दिया तो उनके मुंह से दुआ ही निकली। दुनिया चाहे इसे दीवानापन कहे, मैं इसे महानता समझती हूँ।

कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं। जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन भूल सकता है।

0: 89.1 FM, NTN Radio, the pulse of Guyana.
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना
2: और उनके आखिरी शो में उनकी जिंदगी का पहला गीत उनकी जिंदगी का आखिरी गीत साबित हुआ।

0: लेकिन मुकेश भैया आप कहाँ? अब तो यहाँ बस यादें ही यादें हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। मुकेश भैया का हृदय कितना विशाल था, कितना प्रेम था उन्हें अपनी छोटी बहन से। एक दिन अमेरिका में कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो बोले,
1: हम तो आज भी हर रोज की तरह, हमेशा की तरह उसी गाने से ये महफिल शुरू करेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मगर इससे पहले, जिस देश में गंगा बहती है उसकी एक तहजीब है, और वो ये है कि जहां लता मंगेशकर जैसा महान कलाकार परफॉर्म कर गया हो, उस स्टेज पर किसी दूसरे कलाकार को कभी आना नहीं चाहिए। मगर उन्होंने बड़ा भाई बना के मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रखा है कि हरेक किस्म की बदतमीजी की मुझे इजाज़त दे रखी है।
0: भाई और बहनों, मुकेश भैया प्यार में ना जाने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर जाते हैं, हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मैं शायद इस तरफ गाने के लिए कभी नहीं आती अगर मुकेश भैया नहीं लाते तो। ये एक साल मेरे पीछे पड़े रहे और जिद करके मुझे यहाँ ले आए। मुकेश भैया मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मुकेश भैया मेरे बड़े भाई हैं और मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, तारीफ नहीं।
1: लीजिए, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां

0: 89.1 FM, NTN Radio, the pulse of Guyana.
1: उनका ये गाना मुझे बहुत पसंद था। मैं कहती, मुकेश भैया, आज होंठों पे सच्चाई ये गाइए ना, तो बहुत प्यार से हंसकर कहते थे, गाऊंगा, लेकिन तुम्हें लग जा गले गाना पड़ेगा।

0: लोग हम दोनों से बहुत सारे डुएट सुनना चाहते थे, बहुत शोर करते थे।
1: आहा और वाहा जरूर होंगे जी, मगर पहले होगा शोर। शोर वो नहीं जो आप कह रहे हैं, मगर जो पवन कर रही है वो वाला शोर। सावन का महीना पवन करे शोर।
2: सावन का महीना पवन

0: मुकेश भैया बड़े गंभीर थे, पर सदा मुस्कुराते रहते थे। हाजिर जवाब ऐसे कि फट से मजेदार जवाब देते थे। किसी ने आवाज दी, गुजराती गाना सुनाइए।
1: पची तमें कैसो, मने एक इंग्लिश भी जोइए।

भाई और बहनों, दो तीन साल पहले जब मैं यहां पहला प्रोग्राम देने आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जब मेरे से कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि लता जी को हम यहां बुलाएं, मैंने कहा कि इसके अंदर क्या बड़ी बात है, मैं जाता हूं और बड़े ले आता हूं उनको। भाई और बहनों, आप लोगों के सामने उस महान हस्ती को पेश कर रहा हूं जिसका नाम है लता मंगेशकर।

0: Ladies and gentlemen, to have the fortune to listen to Lata Mangeshkar or Mukesh.
1: कभी जब उनको शरारत सूझती तो फिर किसी को नहीं छोड़ते थे। एक दिन मित्रा साहब से कह बैठे,
2: ये मित्रा साहब ने जो अंग्रेजी में कहा वो तो थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया। हम आप लोगों की खिदमत में अब जो गाना गा रहे हैं वो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

25 साल में हमने कितने ही गाने साथ गाए, जिंदगी के कितने ही उतार चढ़ाव देखे, कितने अच्छे थे वो दिन।

0: 89.1 FM, NTN Radio, the pulse of Guyana.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

सब त्याग दिया, ये त्यागी है, बैराग लिया बैरागी है। दुनिया से वनवास लिया, हाय हाय।

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

जीना लगा मेरा फूलों में, मैं ना सोया कभी झूलों में, जीना लगा मेरा फूलों में, मैं ना सोया कभी झूलों में, जुल्फों के साये में ही नींद आई आई आई, बाय बाय मिस गुड।

मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।